0: इसलिए वो सुरक्षित नहीं जा रहा है।
1: So 3472 data is open.
0: I hope you just advising I was switching.